সদর না গাওকে তুমি আগুন না ভুল মারা পাজিত্রে দি সিখ আসানু মিত শরীর লে আয়ে মেরা ভাই নহি তায়ে থে আমন দি সন হর দিন জোর করতা হে রাম সদগুরু इंसान के जीवन का मुद्दा कारण बंदगी धन गुरु अर्जुन देव पातशाह सुनाते हैं कुदरत चीज न जानिए वड़ा वे प्रवाह कर बंदे तू बंदगी जिसे कटने बंदगी का स्वरूप की इंसान का जीवन बंदगी कहते कि कारोबार छे कम कार बंद सारा दिन माड़ा लेके वाहगुरू का जाप भी करते बंदगी गुरु का सिख धर्म की किरत करता है यह भी बंदगी यह भी सिमरन धर्म की किरत करनी यह भी बंदगी रह बाबा जी सत्यन जी महाराज नानकसर वाले बाबा जी कई बार अपनी पवित्र पावन सुनाते ते बचन करते सन वेला आदमी से धरती से पानी जो निकम्मा आदमी है उन धरती भी प्रमाण नहीं कर्म कर्म कम कर्म इंसान का कर्म हर एक मानवीय पुरुष है उदम करेंगे जीव तो उत्तम करना इंसान का फर्ज है उस उत्तम को कर लेना है मालिक भी बस जरा उदम ही नहीं करना और कुछ नहीं जो इंसान हिम्मत करते हैं उन्होंने मदद खुदा रब है खुद भी इंसान की मदद वो वाहगुरू नहीं उदम करे जीव किसान उदम करता है बैठा ही कह दे आपे बीज उपवेगा आपे फसल घर आ जाएगी गल्ला मारनी किसान का फर्ज है धरती सवार के वत्तर वेले धरती में बीज पाल कितना उद्यम जरा है एक इंसान फिर धरती जो बीज को बाहर करना है किसान का काम नहीं है वाहगुरु की बख बीज ही नहीं पाया धरती में सुवारे तो किसान भुखा मर क्या कितनी जमीन उससे हो इतना उद्यम किसान का था बीज पा लेना बीज को उगाना वाहगुरू का फर्ज और बख्श इसे सूझी फकीर नहीं मिलती

அவளேன குருபு. உடனே காரணம் நாம இன்னே இருக்கு தாய் சஜாவுக்கு சுத்தி சுத்தி பார்க்க சொல்லுங்க. कहने लगा उसको क्या तू नौ महीने भी नहीं, मैं नौ मिनट भी नहीं ठहरते सैयद गुरु विशाल क्या भाई सज्जा गल तो गुरु का हुक्म ही मने आए तेरी को क्योंकि हुक्म हुक्म मालक की बख्शिश नाल जरा हुक्म देना रहमत भी ना तो हुक्म नहीं मनिया तो मैं जरूर मनना ये अपने आप रह जाएगा तो गुरु जान के तेरी सेवा ते जे भजे नसी गल तो सामने कोठी भी बंद भी कर रहे हैं। मैं गुरु का हुक्म मनना भाई सज्जा उठिया तुर लगा मैनू कौन है बंद करने वाला बुद्ध शाह ने मुरीदा इशारा किया इन्होंने पकड़ के भाई सज्जे कोठी बनकर बुद्ध शाह ने मेरा बाल बच्चा भुख नाल मर जाए बुद्ध शाह ने कहा नहीं जिन्हें हुक्म दिता है वो आपे रक्षा करेगा ये तेरे मन की कमजोरी की रक्षा करेगा बुद्धू शाह एवे तो गन्ना बुद्धू शाह दिया सुन सुन गन्ना सिख धर्म जिगाड़ा बच खा के मुश्किल नाल उठाया उसने मुंह च पानी पा के कहता सतगुर यह की किया मैं उधर कैद पता जे मेरा बाल बच्चा सब उनकी मर्जी कौन खिलाती जा बंद एक दिन बीतिया कुछ नहीं खादा पी दूजा दिन होया बुद्धू शाह ने किया सजे प्रसाद तक नहीं मैनू भुख नहीं तीजा दिन होया सोचे लगा मैंने बाल बच्चे तो भुख नाल मर गए हो गए तू भुखा क्यों मरना ठाकुर जी भुख बड़ी राज है भुख बड़ी पर्वन है फरीद ने कहा मौतों भुख मिली इंसान से कई बार बड़िया बड़िया गलतियां कर माने की लिखे दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सब दुआर जमदूत एक दुख रोग लगे सन खाए व्याज न होने का सात पानी थकन लग गया नौ महीने भी समय नौ बीत जाए समय का पता ही नहीं लगता पलों दिया घड़िया घड़िया ने सकेंद चिंता के दिन मिनटा के घंटे घंटिया ने पैर पैर के दिन दिन के हफ्ते हफ्तिया ने महीने महीनिया ने साल साल सदिया सदिया के युग बीते जा रहे युग अखी केरे माट के पल पल भी विहारे पल पल करके ये आयु बीती पता नहीं मन जंजाल ना छोड़ी जम दिया जमा है दिन के पैर पैर से कड़िया अगर कहना आव घटे पंछी है नौ महीने लै भाई सज्जा तेरे पौ पन मुकले हैं अज नौ महीने बीत गए हैं तू जा सकते भाई सज्जा तू जाओ किधर जाओ बाल बच्चा तो भुखना मर गया हूं कोई आसरा नहीं किड़े पासे जाऊं बुद्ध शाह ने कहा जी मेरे को गुरु को चला गुरु को बुद्ध शाह अवस्था मेरा कोई बाल बच्चा बचेगी जी कोई बच भी गया होगा तो उन्होंने भी रोक के मरांगा कि गुरु का नाम भुल के नहीं जाए लुकी बंदी छोड़ के दे चंगा बंदी छोड़ गुरु नौ महीने की कैद दे दी मैं नहीं जान सही गुरु शाह ने कहा तो भाई सज्जा ये भी कोई राज है तू नहीं समझ मच्छी की जाने सागर के डा बैठा
ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੋਈ ਸਕਦਾ।

मैं मछली कैसे अपना कैसे देखा तय तय को उनसे लिखती मछली पानी को बिछड़ी नहीं जीवन हो गया। गुरु का सिख जिस वेले गुरु ने हुक्म विच रहा है तो बख्शिश ही बख्शिश है जिस वेले मनमत आ जाता है।

जा चला जा गुरु को ये विचार बनाया है ताकि चिट्ठी भी मेरी ले जाए जाके गुरु को देके अरदास करी कदे मैं पापी से ही बख्शिश करे गुरु मैनू भी दर्शना दीता भाई सजे ने किया ठीक है गुरु साहब अगे गुरु की चिट्ठी तेरे को ले आया हां ते तो 9 महीने ढक दिता है ते जे तेरी पत्रकार लेके गुरु को चला गया गुरु 18 महीने ढक देगा उन्होंने की करना मैं नहीं जाना चंगा भी तेरी मैं ख्याल है चलो मना अपने पिंड चलते शायद कोई बच ही गया हो तो भाई सजा अपने पिंड पर आया की वेख्या जिथे कखा की कुली सी उथे आलीशान मकान बनिया बिर बिर पिया तक जे सुदामे ने टकिया सुदामे उत्ते भी यह समाया भगवान कृष्ण से सुदामा दोवे संदीपन की कोई पढ़ते विद्या पढ़ एक दिन संदीपन की भी कारवाली ने किया बच्चे हो जी मां जी घर भी लकड़ा कोई नहीं लकड़ा लिया जंगल में दोवे तुर पे संदीपन की भी कारवाली ने सोचिया बच्चे हम जल्द भी जा रहे हैं तो लगेगी सुदामिया गल सुन कौन लै थोड़े जे छोले चने पोटली बन दिते किसने डांडी भुख लगे ये खा के ते पानी का घुट पी ले चले गए लकड़ा कट गया पंडा बनिया सिर के चुकन लगे निरंकार की रेत मारी डांडी मारी रात पे भगवान कृष्ण ने किया सुनामी हम कि करिए घर तो पहुंच नहीं सकते जंगल का मौका है सुनामी ने क्या महाराज कोई आ दरख्त है बड़ा वड्डा इन उत्ते चढ़ चलते हैं रात इसलिए बिताने दिन होगा फिर तक एक दान के उत्ते भगवान कृष्ण जी बह गए दूजे उत्ते सुदामा भुख लगी सुदामे ने वो छोले वाली पोटली कटी सुदामा सोचन लगा मैंने जिस तरह मैनू भुख लगी है कृष्ण नू भी लगी होनी ते छोले छोड़े कृष्ण नू तो पता नहीं तो क्यों ना आप ही छक लेंगे भुख बड़ी जालम की तो सुदामे ने की कीता छोलिया वाली पोटली खोली ते एक फटका मारे प्यारी सास संगत जिस वेले छोले दंदा थले आए ते सुदामे ने चिथे आवाज हुई रात का समा जंगल का मौका टिकवी रात तो दूजे थान उत्ते बैठे भगवान कृष्ण ने किया सुदामिया कुछ खांदा पे सुदामे ने छेती छेती मारा इतने पता की खाने मैं तो कुछ भी व्यक्त भगवान भी चुप कर थोड़े समय के बाद सुदामे जिस वे दूसरा बका मारिया रवाद आई भगवान भी कह लगे भी सुदामिया कुछ खा रहे हैं महाराज तुम किदा पता है इतने पता कोई मेरी मां बैठी है मैंने कुछ देने वास्ते ऐवे गरीबा ना विरास न कर भगवान जी बेचुक कर कोई समय में बात प्यारी साल संगत किसी ने सुदामे ने तीजा फटका मारे फिर आवाज आई भगवान जी कह लगे सुदामिया भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है महाराज तुम कि पता है भगवान जी कह लगे सानू आवाज पी आई है दंदा की तो सुदामे ने क्या महाराज तुम बड़े भोले तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है ते बारिश हुई है ते शरीर भुखा च लग गई है ते मेरा तो दंद से दंद पे बजता है ते तुम कि पुलिस

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे को डरदा नहीं, किदे भरोसे ते

सराय चा बड़ा वड़ा शामियाना है तंबू है केड़ा ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लुआना है।

सरायचा है, तंबू है, इंसान जहाजा ते चढ़ लवे, राकटा ते चढ़ लवे, कितना भी यतन कर लवे, पर इस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ओदे घर विच बैकुंठ है, अते सपत लोक समान पूरी आले, ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

रामदेव ने बाणी च बयान कीता कि बादशाह कहन लगा है नामदेव ऐ गां मरी हुई पई है इस नु जिंदा कर दे जे गां जिंदा ना हुई ता मैं तेनु जानो मार देंगा। नामदेव जी बादशाह दे ख्याल ते अपनी विचार शब्द विच

महादेव नू बन लिया ते बादशाह कहन लगा देखूं तेरा हर बीठल ए नामदेव दस मैनू तेरा बीठल तेरा भगवान कित्थे।

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़ियां दा समा दिता, पर सत घड़ियां बीत गई हैं। गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई, भगत जी आप बयान करते हैं।

का नाम देव जी ने किया ऐ परमेश्वर, और कुछ ना कर बस गां जिंदा कर दे। परमेश्वर ने कृपा की थी ते मरी हुई गां जिंदा हो गई, वच्छे समेत ते नाले दूध दियां दो मटकियां भी भर गई।

दोवे मटकियां बादशाह दे अगे धरियां बादशाह महलां विच है भगत नूं दुख दिता सी हुण परमेश्वर ने राजे नूं बादशाह नूं दुख दिता ऐसा दर्द उठिया कि जिदा इलाज कोई नहीं।

बादशाह ने खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेंट किया।

भक्त नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान दी प्राप्ति हो जाती, अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर तो पार हो जाता है।

पर जे गुरु दयाल हो जाए देहोरा फिरे देवरा कहते ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव जदो पंडता ने नीवी जादा समझ के मंदिर विचो कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे ने

बादशाह ने पूछा, भगत जी एक सेजता मेरी है, ए बाकी सेजा कीमती किस दिया ने? ता नामदेव जी कहन लगे, बादशाह जदों कोई परमेश्वर दे नाम ते अपनी कमाई विचों कोई चीज दान करदा है, पेट करदा है दसां नूं आंदी फिरत विचों, ता ओ दान कई गुणा फल के उन्हों मिलदा है। ए सारियां सेजां तैनूं मिलणियां सन, पर तू दान करके शंका कीता, इस करके ए चीजां हुण तैनूं नहीं मिलनियां। ता बादशाह उस वक्त हाथ जोड़ के कहन लगा, भगत जी मैं भी बादशाह हिंदुस्तान दा, सारे लोग मेरे को डरदे ने पर तुसी नहीं डरदे। उस वक्त भगत नामदेव जी ने मलार राग दे विच ए शब्द उचारिया, सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन। है बादशाह तू दुनिया दा बादशाह अज है, कल खत्म हो जाएगा, पर जिहड़ा साडा बादशाह है ओ परमेश्वर, ओ गोपाल, ओ कदी खत्म नहीं हुंदा, उन्नू कदी मौत नहीं आंदी। उसने दुनिया बनाई है, खंड ब्रह्मांड बनाए ने, उस गोपाल दी असी पूजा करदे हां, जिहड़ा कदी मरदा नहीं, किसे कोलों डर

0: और
1: उस परमेश्वर दे घर की है। भगत जी ने बयान कीता जांचे कर निकट वर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद नेजे सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला एते जी जांचे हैं करी सर्व व्यापक अंतर अरे प्रणवे नाम देओ तांची यान सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह ओ परमेश्वर इतना ब्यांत है ए जो मैं दसे है ए ता कुछ भी नहीं सब कुछ होद है ओ बनान वाला है प्रणवे नाम देओ तांची यान। नामदेव आखद है ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो क्योंकि उस गोपाल राय तू कोई भी वड्डा नहीं।

तुरते चले गए। प्यास लगी, पानी दी पाल की थी। एक खूह नजर आया, उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरश सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू पियाया, कुछ लोकां नू भी पियाया ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना, जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे कोल बैठ गए, हाथ विच खड़ताला।

जिथे अंब लगा होवे कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी ए। इसे तरह मेरे रमैया जिवे धरती पानी नाल प्यार करदी ए बरसात नाल, पवरा फुल दे नाल कोकल अंब

तरनी के औरत नु कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी है, इसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है कहें ए नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार कर दे जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होने।

कबीर साहब नु गुरु दी लोड़ है। अधी रात घरों उठे गंगा घाट जा पहुंचे, जिहड़ियां पौड़ियां तो स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन। कबीर साहब मुंह सिर लवेट के उन्हां पौड़ियां ते जा के लम्मे पै गए। इस कथा नू भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करने वाले।

ते स्वामी जी तू पहला ही अगे ही दे जाए के लम्मा पया कबीर ते थाई जेड़े रस्ते तू स्वामी जी ने लंघना सी उस रस्ते ते कबीर साहब जाके लम्मे पै गए।

स्वामी जी आए अमृत वेले, बड़ी मस्ती विच राम राम करदे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखे आ पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया, रस्ता नहीं सी।

पर जेडे महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है, तां नाम ही निकलना है। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

ठोकर लाण दा ऐसा असर होया जिस तरह लोहा पारस नाल लग जावे उस वेले सोना बन जांदा है। इसे तरह ही कबीर साहब दे शरीर दे नाल स्वामी रामानंद दा पैर लगा ते लूलू दे विचों राम राम दी आवाज आन लगी।

ऐसा असर हो गया स्वामी रामानंद पैर लगा के एक कहन दा के उठ राम के राम को पाए। गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई, राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदों इशनान करके जांदे सन दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नूं इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके, कपड़े भी पवाए, सिर ते ताज भी रखे, मुकट कलगी भी रखी, पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं, हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी, जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं, मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा क्योंकि हार छोटा ते चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा किवें करा। ता कबीर साहब बाहर बैठे सन, उन्हां जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने, क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा, ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने। ते कबीर साहब ने बाहरों कहा स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा, ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ

उठ के बुआ खोलिया, बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है? कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां, तुसा मेनू गुरु दिखिया दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दिखिया दीती नहीं, अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए, मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी, तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम कहो, उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं, तू ते मेरे नालों भी अगे चला गया है, तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान लई है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, कत जाइए रे कर लागो रंग, ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

तीसरे भगत भगत धन्ना जिन्हां बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करदे ने।

तीसरा दिन चढ़िया ते धन्ना कहन लगा हौ भी मुंह ना जुठालसा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडतां दे हत्थों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना।

0: परमेश्वर नु रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तो असी खा ली हुण दस तेन चाहिदा की तू याद कीता मैं आया हुण मंग तेन की चाहिदा ता तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दी लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला

पोड़ी नुके है भगवान पैरी सोहनी जुती पाई होवे सोहना सूट पाया होवे घर विच अनाज भी होवे गां ते मझ भी होवे ते किधरे आना जाना पै जावे ते पैदल तुर के जांदा फिर आदमी चंगा नहीं लगता कपड़े चंगे पाए होन ते तुरिया जावे पैदल चंगा नहीं लगता आना जाना भी पैंदा है दूर इस करके कृपा कर एक ताजन तुरी चंगेरी एक सोहनी जी घोड़ी भी दे ताकि किधरे आना जाना होवे ता ओ सफर मैं सौ

है परमेश्वर घर बन गया दाल आटा घ्यो ये भी मिल गए पैरी पाण वास्ते जुतियां सोने पाण वास्ते कपड़े भी मिल गए अनाज भी मिल गया गां ते मज भी मिल गई आन जान वास्ते एक घोड़ी भी मिल गई सोना घर बन गया पर एक चीज की कमी है भगवान कहन लगे धन्या ओ केड़ी कमी कहन लगे परमेश्वर ओ कमी है घरवाली दी भगत जी कहंदे ने घर की गेहन चंगी घरवाली आज्ञाकार तेरा नाम जपण वाली चाहिए भगत जी अपनी बाणी विच

0: रत्नवा बारू पीत बनाई रचपत रत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उज्जो कहां गवा
1: अजू समझ रच बिगड़ा ना हनी अजू सम

सब मर्यादा पूरी हो गई। हुण तक महाराज गुरु बने रहे ते हुण आप जी दी वारी सिख बनन दी सी। आप बड़ी निम्रता नाल बोले, हे अकाल पुरख दे खालसा जीओ, तुसा सारी दुनिया नू अमृत दी दात बख्शनी है। सब तो पहला दास नू भी अमृत दी दात बख्श के गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना लवो। भाई दया सिंह जी ने कहा, महाराज अमृत लेना है ता इस दा मुल भी देना पवेगा। असा सिर दे के अमृत प्राप्त कीता है, दसो आप इस बदले की दोगे। हजूर ने सिर झुका के कहा, प्यारे भाई दया सिंह जी, जे सिखा ने अमृत बदले सिर दिता है ता सिखा दा गुरु इस बदले सरबंस देवेगा।

गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके पंजा प्यारियां नूं छकाया, उपरंत आप छकिया अते खालसा पंथ दी सिरजना करके सानू एक वखरा ही स्वरूप दे दिता, ताके सिख लखां विच कल्ला खड़ा होया भी दूरों ही नजर आवे। इसे करके अज असी बड़े मान नाल एक कह रहे हां, साडा मुंह मुहांदरा वखरा है, साडा रूप वखरा, साडा रंग वखरा, किसे कौम दे नाल नहीं मेल खांदा, तुरिया आउंदा है साडा पर संग वखरा, साडी आत्मा दे लक्षण वखरे ने, साडे जिस्म दा हर एक अंग वखरा, साडी मौत जहान तो वखरी है, साडा जिंदगी जीण दा ढंग वखरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दियां बीबियां दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो, बुलाओ फतेह ते आखो गज के वाह।

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना बांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जां भैणां नू ताल सुर दी समझ ना होए ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिहदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणां जां वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज नाल बोलन ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिलना है।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दीयां मंगां। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगा कबूल कर रहे। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तों इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ा, हां मंगना चाहिए, पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहिब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे, कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे। हे परमात्मा, जिन्हें मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगा, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है, पर सब दियां मंगा तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो, निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं, इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ। फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उन्हूं सांभ सका। धन लक्ष्मी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहिबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू, गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे, परमात्मा दे तन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने, घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी।

सो के सो कुकिए ना सो ये आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार कड़ी ते पुकार सुनेगा ना बस मंगता मंगी जाए मंग बार बार दोहराई जाए किवे मंगे बबीहे दी तरह उस चातक दी नहीं आई जेड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा मंगी जांदा है ना दिन विंद है ना रात विंद है वो पुकारा करी जांदा है बबीहा बोल रहा सी किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना है कहना एक बूंद चाहिदी एक बूंद ली बोल रहे मंगती का पहला गुण है जी कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है नदियां नाले ने सागर हन तालाब हन वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले कहने नहीं ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते मैनू तो एक बूंद चाहिए एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही ख्याल करियो जी एक बूंद जल कारने चातक दुख पावे एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले कहना जा जाके सौ आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे क्यों नींद हराम कर रहे बबीहा नहीं मुड़िया जी बबीहा बोलता जा रहे आखिर की होया वो एक लिव नाल बोल रहा सी एक कोलो मंग रहा सी बाणी विच फैसला है जी